रोज नमाज से तो भी समाल दसोर पिलेनो रोहस नंग नाग समाल दसोर अंतोनियो डगुमान नाते एबीसी प्रेसिडेंट तो नंग तबिना समाल दसोर गिडियन तानो नंग तबिना दसोर जोनी लीसो नंग दुमलिनो समाल दसोर होंसियर जेसिनेल पाउलो नंग दुमलिनो समाल दसोर ग्लेन लोडिबिसी नंद मिलना संभव है दसूर और रोयल पंताओं नंद दुमिलना संभव है दसूर अच्छी डायरेक्टर किसीना रिको हेरमोसो नंद पगडियन सिटी सिसिस क्वितो अच्छी माम चलिंग बुगाबों में संपाबल संभव है दसूर इतु यूंग मगंदा कुं कुमारी तके संपाबलो अजी प्रिंस पंप्लोमा Oi, nang San Pablo sama medtek itu, taka San Pablo. Rusito Antugos, nang Aurora sama del Sur, Gemma Gopio, nang Pitugo sama del Sur, kumusta mga Gemma? Nieros. Hier tuman tong, ito, Montenieros. Nang pitugo sa mga resor at Willie Soriones. Kasama ko rin si Aida Bag.